हाउ खपङले मार्केसिङ विश्रामगन्ज नि सिनि बुखु गक्रा अञ्जलिनि खोक्तै नबार वातैन तै न्याय ब ककटाङ सैमानि आबनसं खानालाग्या हाउ बेलाखि खाखाम स्रेप स्रेप ब माङखा।

0: आओ खपंग मार्ग सिंह विश्रामगंज नि सिनि बुखु गक्रा अंजलि नि खुक्तै नबार वतैन तै न्याय ब ककतांग सैमानि आबनो सिंखना लागे आओ बेलाखि खाखाम स्रेब स्रेब ब मांखा तामनि हिनके लांगमारो कमाखा बाक्सा ना बफांग वाफांग बाइख्या तंथाय चामुंग थुयाम कमाखा चिनियो नबार ओ वतै फाइमानि जराओ बन बागैनो आओ सों थांलासो थानियो बेलाय गेसेबंखा ताबुक बाहायनो सों आरनि सों बाजै मेयाखौ तामनि हिनके सिनि गामियाम जायरगो ताबुक बहायनो गोबां मा गामि रगो फेरां हायखाबो कारेन ताबु सगैयाखौ मबाइल रग सुइस अफ उङि दंमायखा दै रग दिसैमानि आङि दंमायखा सामुं हुमुं खालाय थानियो केबें मुङि बाजाखा बन बागैनो खाफुंनि मारिकिसिं आव ओ नबार कतर हायखाबो वातै कथर बानकुन्द्रि फाइमानि बरनि फान थानसाखे बरक तंलायो साबजाग्लायि नर नुखना खाफुंनि मारिकिसिं नखा समग्राखा नबार किसा सिबचारि रिग्राखा वातै क्लायखा हा कसम रिखा बुफां मार गेरखा आसक बै सिमिं पाइयाखौ कथरन रिंहरखा कथर क्लायख्या बायतखितिनि नुखुं हामथाया आ नुखुं गोप्ला ताइबो गोप्ला कथर ओंखा नग बिसिङ वातै हाबखा आसक बै सिमिं पाइयाखौ बानकुन्द्रिन सबर रिङै तुबु उखा फाइदि फाइदि होनायनाय बानकुन्द्रिनि फान फुनो उखाब्लायना आव हाइके अम हाइके सिनि सों तंनि दंलाय मानि सिनि तं सं तंक संन देरारि मानि सों नुखु बन बागैन अ नबार वातैनि फान थानसाखे तंखे आसे क्लेबरनि फान हायदाना खाबनो मार्केटिं आव नाय निगरना हाइके नरनि कक कक दुगो साबतं हेलो
1: हेलो
0: हेलो फुंकाहाम
1: फुंकाहाम तागारदलन कनिका साइ दङ
0: बेलाय खरां स्राय स्राय
1: कोनो ककदां कगलब खानानि बागे खाइले आसुदो सोंहर जे टंखलाय जमा नाबो फिसा नन खनार ना बुसुं गाते
0: आं फाइसि मांगलाग बे
1: दै गरे आबरे नर नतै जे बुफोर प्रोग्राम खाइने
0: गाते नरक बाय बाक्सा फाइन मुसुं मानि
1: खाले खाइले एक दिन ना भाइ नर नतै दिनै आबो काइसा दिबां
0: दै गरे
1: दन कमम टंखलाय जमा रसे
0: बेलाय हामबाय हेके नरक जादुनि रग रसाबैनो खोनालाय दैता
1: दे रसाबायनाय
0: नरकनि बिसिंगन जादुनि रग रसाबनो गोरोंबो दङ ककटां कगलब छाना गोरोंबो दङ
1: आंखे जादुनि रग माइया थांथे लाइन थांखौ गान्दो रसाब दिंग्लो रसाब मानानो
0: निनि खरां गाहाम नों रसाब मुंथांसासो रसाब खाहांखे सामा खानाय दिबा खरां सिमिं ताबो नों रसाबि खानार गासै मायनो बरगनि बोखानो गब खायतरि मान होनो
1: दंथलायदि
0: हामबाय आव खाफुनो मारिकिसिं दुइगुरियाव एफ एम बदल रग सगैलाय जाग बेलाय हहम ददम बर कुथुमलायमानि आव दंथलायदि ताइ नरक केबया नरंखे सिनि खासुकसा सिनि खासुकनि सिनि एफ एम बाय साल ब्रह्म गोरोङै दंनाय नरंनि जारैनो सिनि एफ एम ताइबो सा सावि फायो सिनि एफ एम ताइबो मोसाङो मोसांग्रोनाय नरकनि नरक कल खालायै नरंनि केरांख थमा बाय नरंनि ककदां नरंनि कक लब बाय सिनि पान्दा ताइबो नायथगै फायो ना आव हाइके नायफियोनो साव तंफि अजराव
2: हेलो हेलो दीपक कहाम सर
0: दीपक कहाम

0: आव नर खनाई तंगो सरसा पॉइंट डॉक मेगाहर्जो एफएम उजोइंतो खापांग याक्राई पांदाओ तंगो नरक बाय नरुन किसिंग आंग कुंजो नयन कोक दुगो स्वागतम हेलो
1: दीपोर कहाम सर
0: दीपोर कहाम
1: गेज सर तिनी के कोक लब बाय केरन कथमानि
0: आ कोकलोप केरंग कथमा सेंग हातिबारनि सा साल ब्रुम ब्रुम खापांग याख्राय पांदाव हंके सेंग अमहाके सेंग सालायो खनालायो
1: सार
0: ए सादे
1: आनो नाकार जादि आंले कोकलोप बाय केरंग कथमाला मान जाया आं कैसा रसामुंसे किसा खानम सुवनि
0: अच्छा नों बरतं तै सारु तं सागरदि
1: आं बर्दमान ठाकुर पारानि रंजन देब्रमा साहरि तं सार
0: बर्दमान ठाकुर कामिनि रंजन ना ओके
1: सर
0: रंजन तै स्राबचानि उलो नंग रसामुं खनाय मानाय दो आफ्रो नंग करंग हरदि
1: आफ्रो लाइन जमा नमाया
0: माननाय माननाय
1: रसामुं करंग सार बिसनानि गान किसा बिनि रसामुं बिया खनादि
0: दा खनाय नाय
1: पाइ थांका आनि खा गफवा सहाय मानि सार
0: दा खनाय रवाना को हामबाय दो
1: हामबाय सार
0: हामबाय

0: बेटा ये तमाशा देखोगे?
1: हाँ।
0: बाद में देखेंगे ना?
1: नहीं, मुझे अभी देखना है। तुम तो बोलते थे कि मैं लाफो मार के दिखाऊंगा।
0: बेटा यहाँ लाफा नहीं चलेगा, तमाशे वाला बदल गया। चलो घर चले।
1: नहीं, मुझे अभी देखना है।
0: देखना है?
1: हाँ।
0: चल बेटा।

0: बच्चों, भूत बाबा की मुझे कहाँ गई? क्या पेड़ के साथ मुझे भी कट गई? चलो इसी बात पे मजाक डाली।
1: अरे ये तो मर्दों की खेती है, जब जी में आ बढ़ा लिया, जब जी में आ कटवा लिया। तो बच्चों बजाओ ताली, चल दिखा दे मेरे राजा को तमाशा। तमाशे वाली
0: क्या करता है रे? तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? मेरा नाम तो फूलमती है, फूलमती।
1: अरे फूलमती हो या मधुमती, चल बच्चों को तमाशा दिखा।
0: पहले पैसे निकाल।
1: अरे निकालता हूँ, पहले बच्चों को तमाशा तो दिखा।
0: आ जा।

0: आओ खबरें मार्किंग नरोगबाई हिरसामुंग रोग खनाते खनाते स्टूडियो नी जोरा खोगो दीपोर्नी दामसा ताई शोती चार मुफ्लिक थामची चुकु उंगलाहा आओ है के नरोग नी हमजागमा चिनी खातुमा पांदाओ नरोग नो नरोग नी खनातोग जागमानी हिरसामुंग रोग खनारवई खापांग ताईबो तोंगथोग रुआना ताई सरांग रुआना नायन कोगदुगो साबतोंग हेलो
1: हेलो
0: आओ दीपोर कहाम
1: आं एसे प्यार कहानी के खानम मता
0: ऐसा प्यार कहा हां बरसमो
1: गाली को सके पागल तेनी ऐसे प्यार कहने मता
0: बा उफ न मते ब आर समो रखना वने बखन तेब को खाय मुसु हसिब लेना
1: हां जो तो खाना में पते मा ओबो मा मा
0: तेब तेब तुम फलाना मुसु दना पागल प्रेमी कैसा होते है ना वाह और समुंग तो मौत कसम से
1: कसम भाई ना मैंने आप जय पड़ता भाई इनको इनको खाचा लेखन चोकर पति
0: हाइनो दो है के नंग खाना तो जग मनी रसमुंग खाना ही नगर सीरिता
1: दो को खाना दिखता
0: खाना दी

0: आओ नाइग्राफियन हेके हजुरआव राजाजानि 1972 फिल्मनि रसामं खनाय पाय माने ओलो ककदगो साबतं नाइग्राना हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: लाम हेलो सरकाथल दगुरायनि स्वर्णमाला बिथाङा सारि दं ताखो
0: आओ सादि
1: सेम खाजा खनानाय सरगि सरगि सुनोलि
0: नेनि खरां कामके पासा पाया
1: ताबोखो खनाखा
0: हि साबि गरादि
1: सरगि सुनोनि आपकी बरफ फेर जामानि
0: स्वर्गीय सुंदर
1: सुंदर
0: स्वर्गीय सुंदर
1: आपके बरो फिर समता
0: उसने
1: भाई किशोर कुमार
0: है जी ना
1: आर नायक हुकाय मिथुन पदनी जो प्रदा दिल रता
0: है जी ना
1: हम भाई तक
0: दा को नहीं ना बनो आंग नहीं नहीं करना हमके दो के फिल्म ली मुंह
1: आप ना बड़ा किस खाना में कुछ करें
0: आओ आओ आओ आओ दा खाना दिया को हम भाई आओ हके ओ स्वर्ग से सुंदर रसामुग्न खाना बागई दुग्राई स्वर्णमाला सा कब खर्मानी और रसामुंग बीनी बागई नंग्रासीतें अजराव आपके भारस बारुण के भार आओ खाना कर सीधी स्वर्णमाला निखना तक जागमानी और समय

0: आओ बेलाय खना तका आपके बारास सरक से सुंदर 1986 बिसिनी और समुंग किशोर कुमार तय आशा भोसले ने खरांगो तय बेलाय खे तिनियो खना तक जागमानी हिंगांके और समुंग रंगनो आगे है कब संगवां खना माने मा खना या बालोखा फियाबा नरनी रिक्वेस्ट रोक नि बिसिंते तिनियो सकांनि समुंग रखना मया यां तिनियो हाइन हाइ खनाना नि सेबमान खा तय आं बो तंग थका आओ नाइफियन है को जरो कक दुगो स्वागतम हेलो
1: हेलो दागदा
0: आओ
1: दिवर का हम दागदा मा
0: सादी
1: आंग लंगापुरानी प्रदीप से
0: आओ सागरदी प्रदीप बरसम खना नाय
1: आं खाय तो साजानी खना नाय ओ जिए तो जिए के से हने रे मन बिन आपके हने
0: ओ हायसे
1: कैसे कहो बिना तेरी जिंदगी ये क्या होगा है ने
0: पा नंगनो समुंग बा पाइरि सबै माखा ब्लासा दिन म खरंग दिन म खरंग हमो
1: वाह ना गदो भाई कोक सागा हंकाय आराम ना गो कोक सामने कोसो कोक ओ का हंकाय छाब लेदा गदो खाय ए खना तो गो खरंग बा आराम नांगदा ता कोक मा सगाय ता गतो बा आम कोलंग मा यांग थांगो
0: नरो गरसामुं खनान बागै हाय छाना ता
1: हे त होनाय न खाय दो ता कतो कुसु फुर्ति न तंग ओ
0: हायनु हेखन मा तंग लायै ता
1: आ आ आ
0: हायनु द खना दि नंग खना त जमन सामुं खना दिया को दो खना दि आओ जे तु जे कैसे बिन आपके अबो आओ खना नान बागैनाय लंका पुरानि प्रदीप बसा हरमानि हाके बिन बागैनो अरसामुं इंग्रासितिन

0: सबने मारेकी सिंह साजान फिल्म ने रसामुंग नरखनाई तंगो पंकज उदास नि खरांगो आओ हाके नरखनी हमजागमा चिनी खातुमा पांदानी पाइथा कलार साबतंग नाइन एग्रेसियन हेलो
1: हेलो
0: हेलो दीपर कहाम सादी साबंखा ग्रंगी मानलिया आओ हेके खापंगने मारकी सिंह नरगवाई रसामुंग खनाते खनाते आओ दीपोर्नी दामसा ताई सती नैसी चुकु उंगलाहा आओ हेके तेकाशा नाइने गरिसवा ना साबतों हेलो
1: हेलो मनाय दीपोर कहाम
0: दीपोर कहाम दीपोर कहाम
1: अरे को मा करंगला खहिं तो मानी और पैसा गो से मानछु
0: सादी सादी सादी
1: आं केर तम खनाई को इने ताखु बिमल खाना याकर थनाय मेरो तम ओ हिंते हिंते साले थाते सालते ते कमाई थाते हिमाने और तम नरी दी
0: ओ हिंते हिंते ना अबुजों सगांगो खाना लाखिनाबले हेदा
1: नापा आं खाना तो जाक्ता
0: आओ आओ आओ आओ
1: परंग वो खाना तो कुंगे बाजी ने अब वो तीन जात तो एक है बदल ने बाजी और सामो और तो ना
0: आंग नहीं तो मो
1: आप उन जुटी करी हिंगे आप उन करी हिंगे मनाए ओ हिरम कुमार ने जादू ने बाजी खुम खुमता अगले सुपर मानी हिमानोरी दी आबो यतो बो ओ बिमलनी ना नायग्रा दितो हिंते हिंते ना
0: बिमलनी हं रसामों नन बिमलनी रसामों हिंते हिंते एफन जस बनंगर सिदं आंगताबो जराब पाइथागो फाइसा बायजाखब्ला इच्छा से मा खाना रसिनाय दो बायखो तो
1: आबो आबो खाना देखे जादा खमोसा हिंते हिंते ना
0: जराब पाइसुका
1: ए बाखोन
0: खा हामिया तांगदी गुबुन सालाव आं खाना नाय दो आव खापने मार्केसिं जरा बेलाय बायसुंग फायसक बायसुगा सिने बायकतो अनलखि एसामुं तां साखनार दिनि साहरमनि बिमल देवर मबायर सबजाक फियाबा नरगनि हमजाकमा चिनि खातुंमा पांदा बेलाय बायसुंग हायगा पायथाखौ फायसक बायथा गोबां खानारि मान

आओ खपुने मारेकी सिंह नरोक्ने हमजकमा चिनी खातुङमा ताबक जरा तै आसुङ सिनाई बाई कत बायो नलखी हिमती हिमते रसामोङ बिमल वेयर सब्जा खनार दिखने सामानी फियाबा बाई सिंगो मानी बागने आं नाय टगै बना खनारि मानलिया ककरै गुबुन सालगो खानारनि बागै साइटगार आव हाइके सों ताबुक तै कैसा पान्दाव सों थांलायवानो सिनि ताबुकनि तै कैसा पान्दा बेरेम गांके अबो गांके सरंगदि तै सिदि सरंगदि सिदि आव हाइके सों ताबुक तै कैसा सिनि पान्दाव सों थांलायनाय आव आबुनि उलो हाइनो हाय खनाथ' थ' खरां तंफिर' खाफुंनो मारगिसिं नरकन' आं रसामुं रक खनाथ' थ' खनारै खाफां स्रांग्रोनाय खाख्लायो नरक पाइथाक जरा आंबाय दिपरनि दामनै तै सति थामजि जरा नरक आंबाय तंनाय होनायनाय आव नरक ग्रोङै तंदि आंबाय तंदि खोनाय तंदि सारसा पइन्ट डग मेगाहार्ज एफ एम उजयन्त नरक तंदि नरकन' नरकनि खानाथक जागमानि रसामुं रक आं सैमानो आं खानारवानो हाइके ताबुकजों सोरोंदि दायसिदि पान्दाव थांलायगारसिवानो

औ हाइन हाइलाम सोपिरो खपने मार्किसिन नरक जत्तो नन सारसा पॉइंट डॉग मेगा हरजो श्रृंगदी ताई सीदी पांदाओ मोटिवेशनल प्रोग्राम औ सिंग सिनानी ताई साइमानानी बेलाइके बेलाय बेलाइके नांग सुगो औ तिनियो सिंग किसा सिलायन ताई मुइतु ख्लाइलायन तिनिनी सिनि सिलाइजांनाय हेंगा हंके डोमेस्टिक वायलेंस नो तैनाय सिंग तिनियो किसा सिलायन डोमेस्टिक वायलेंस माने हेंगा हंके औ सिंग जतनो नक नुखुं खालायो नगो चलाबुसा हायकाबा साय हि क्राक राजक बुमा बुफा हायकाबा बुसारक हायकाबा सामुं तांनायरक अमहायरक ख्लाइनाय दङ फियाबा नक नुखुं रगो आव खाकसां खुप्लुं ख्लायै तंनानिओ जर जरावो

के चं बासा लायन खरंग तीसा लायन मरकनो लामा फुनो गान हाय दिबा हाके सरंगदी ताई सिदी नि सिनि कक बथमा सरंगजाखनाय अमनो डोमेस्टिक वायलेंस आबो नुखुंगो खरसा ते खरसानो तरसार ख्लाइमानी बुतक ख्लाइमानी सिक्रि सक्र ख्लाइमानी रां पुसारक रिया उइनाय बनो कंट्रोल ख्लाइ तनमानी अमनो हनो डोमेस्टिक वायलेंस फायदि सों खरां तिसा लायन सों सिलायन बयनोबो सों सायमान लायन ताई आबनि याकनि सों फियक लायन

ताइसा मादे मालायनो मालाया बिसना ताइ सुरबिनि खरांगो नरक रसामुं तांसा खोनाबायखाना आव हाके जों रसामुं खोनालायनाय ताइबो जों खोनालायनाय हायादिबा ताइ जरा तंख नरकबाय दिपरनि दाम नै ताइ सति थामजि जरा आं तंनाय आव हाके खापांनि मारकिसिं अजराव रसामुं दोसों खोनालायनायनो हाइफोनो नरगनां तैसा मैतरक ख्लाय मारफि मानि होंगा के आव सिनि नक दुखुं रगो खाकजांमा कप्लुं ख्लाय तंनानि होंगा के खरकसा खरक खरकसा ते खरकसानि खानो जों सायमानानै नांगौ आरो तामनि बागै जोंजाल रग फायरग तंखा तामनि बागै खरकसा ताइ खरकसानि बिसिंग' हालक हामियारक उङै तंखा आब्रंनो तैयै जों सिनानै नांगौ ताइ आहायनो फान दङ होनैनाय हायखाबा पावार खमता दङ होनैनाय रन्दि साय होनजांनाय रग ब हिग होनजांनायनो हायनो ब बनो तामनि कन्ट्रल बेलाय ख्लायनानै हायखाबा ख्लायमानि आबो आसोग हामथाया हायादिबा ओंखे फ्रीडम होनै होनमानि अ फ्रीडम आबो नांगौ तमुन फ्रीडम गोरै होनगा ओंखे बर' रग हामसावै तरसावै ब मानग्लाग हाके जों मन बागैनो नक नुखुं रगो फान गोनां रग हायाखाबा पावार दै दंनाय रग हायाखाबा नकनि बख्रखनि होनजांनाय रग बरग हिग हायाखाबा नकनि बोसा रगन' गोबां जराव बरगन' तं गोसां ख्लाय तनानै रैया बुटक ख्लायमानि हायखाबा सिख्रि सख्र ख्लायमानि रग नुगौ ताइ हाया होंगांखे ग्रमदि बोसायफोनो केबेल ओङै दंखांखे बिहिग ग्रा गाहाम ओङै दंखे बफोनो बोसायनो तंकेसेब ख्लायै गोबां मा लामातै रोंगिया सिया आइजौयै मानिया गोबां मा लामातै बनो तंकेसेब ख्लायै मानो वानामाव खिख्लायै तुमुनो तनखांखे आबो बहायनो डमेस्टिक भायलेन्सनो खबजागो ताइ ख्लायो ताइ तुमुनो नकनि बोग्रा बोग्राजोग बेलाय उमर चाक्रा ओङै दंखा बरगनो नायनाय गोरै जारनाय गोरै खानरनाय गोरै थुयाम गाहामरनाय गोरै फियाबा बरनो सिख्रि सख्र तंके सेब जे ख्लायजागै दंखा हंके बरगनो चामुं गाहामरग जारियावै गोबांमा लामातै बरनो सेक्रबै दनखा हंके बरनो सिख्रि सख्र ख्लाय दनखा हंके आबो बखायनो बेलायखे जाया बेलायखे जाया आव खाबनो मारकिसिं नरनि बागै चिरकुमार बायर साबजाक रसामुं तांसा ओंग्रासिदों अजराव

0: आओ खबने मार्गिसिंग ओ जोर नरकन रसमों ताई थांगसा खाना रोनाय ओ कुसी कंती और समूह खनाई नहीं बिगड़ सी ओ जरा
1: नारे

0: Now just imagine, एक लड़की नकचड़ी सी, थोड़ी सी पागल, you know, slightly mad like you.
1: अच्छा?
0: और एक लड़का.
1: और लड़का बड़ा समझदार है ना?
0: नहीं नहीं, लड़का तो उससे भी बड़ा पागल, वरना उससे प्यार कैसे करता? और एक दिन चर्च में,

घर अपनी सकाने रांगमारी खक बा रजाक कहामकुक अंगजाक पंचायत ने थाइमानखा उनकोटी हांखरने कुमारघाट ने महकमानी कांचनबारी पंचायत अपनी सकाने रांगमारी खक सा रजाक बुरीरगनी बाकी खापीजाक पंचायत अंगई फिल्थामनी थाइमानखा सालथांग हांखरनी हेजामारा ब्लक ने बैकुंठपुर कामी पंचायत अवन ने सकाने रांगमारी खक नैसी बारा साय हाइं ककलम नाई रवींद्रनाथ ठाकुर ने आजाइमा साल रगी हास्ते बेरनी पांडातिनी कैलाशर ने उनकोटी कला क्षेत्र संसाजाखा रंगनायखुंगताई ककथम हुकुम नायखुनी सुबा सुबाय जोगालीजाक अ पांडानो चेंगिरेखा थंमंत्री टिंकुराय ब आरो ककनारोखानी रवींद्रनाथ नि लांगमाताय सामुं रक्नती ककनारोखा पांडाव कुबिनि बिसिं मानजाखा उनकोटी जिला परिषदनि कासको अमलेन्दु दास कैलाशर आउली नायमथानी चेयारपार्सन चपला रानी देव राय कुमारघाट आउली नायमथानी चेयारमेन विश्वजित दास आकसं आरो जोगालीजाक पांडाव रंगनकनि परिनाय परिनाय जोग्रग रवींद्र रेसामुंगताई मुसामुं हुकमु पांडा ख्लायखा ककथम हुकमु नायखुंनि चेतन बाय तिनि फुंगो आगतलानि रवींद्र कानन कवि प्रणाम पांडा संसाजाखा पांडाना सेंगेरेखा स्नाम खत्ताई बानिया मन्त्री सान्तना चाकमा आरो मान्जाखा हुकमुनि कक्लब नाय कमिटिनि चेयारमेन सुब्रत चक्रवर्ती आकसं कक्लब गोरोंनि आसामा सालन रोगै बांग्ला संस्कृति बलयनि चेतन बाय तिनि फुंगो हिमबत कायसा संसाजाखा आबनकारै साफुं तिनि जुदा जुदा पांडानि बिसिंतै पालायनानि चेतन नाहारखा बांग्ला संस्कृति बलय आयंग छंद निर संस्कृति मथानी चेतन बैतिनी रवींद्र शतवार्षित की नखलाव कपि प्रणाम पांडा संसाजाखा सिपाही जल आमचाई हांकर आमचाई अब जायजेखे बरम रुमानी बिसिंती रवींद्रनाथ ठाकुर ने आसामा साल पालाईजाखा हांकर ने याफांग पांडा संसाजाखा मेलाघर आरो मानजाखा मेलाघर पुर परिषद नि चेयरपार्सन अनामिका घोषपाल राय यांग सालसि त्रिपुरा हांकर आमचाई ने याफांग पांडा संसाजाखा धर्मनगर आरो मानजाखा धर्मनगर निकटाल चंगजाक एमएलए जहर चक्रवर्ती आउली नाइमटेन चेयरपर्सन मिताली रानी दासेन आकसं आगतला वुमेन्स कलेज ने एनएसएस यूनिट ने साक्षरमबाई आम्बेडकर पल्लीओ ल रवींद्रनाथ ठाकुर आसाइमा साल पालाईजाखा खयहांकर नायखुनी साक्षरमबाई ताई गनकी रेमसी ने रिंगनक ने जुगालमुंग बाई खयहांकर ने बेरेनी पांडा संसाजाखा गनकी रेमसी ने रिंगनग आरो मानजाखा खय जिला परिषद ने कासको जुग अपर्णा सिंह राय गुमती हांकर आमचाई ने याफांग पांडा संसाजाखा राजनगर ने भुवनेश्वरी मताई नक बुस्कांग आरो मानजाखा एमएलए अभिषेक देवराय गुमती जिला परिषद ने कासको देवल देवराय आकसं हास्तेनी संगबारी कमिशन एडिसी ने विलेज कमिटी संगबारी ने बागै तिनी निसिमी तियार ख्लाइमा चेंग्रेखा संगबारी कमिशन ने तिनी विलेज कमिटी रक्ने केन्द्र ने पुइला बेरेम ने बुमुंग बुटां कारिना बागै साख्लाइमुंग बक्सेनखा अ साख्लाइमुंग नरगै बुथ केन्द्र ने पुइला बेरेम ने बुमुंग बुटां ग अ मेटाल ने सालचिसा सालमारी अ कारि जागाना अ बुमुंग बुटां ने साका सानमुंगताई कक आसमुंग यासाक जागाना मेटाल ने सालचि बा सालमारी अ अपनि कक पाइरे जागाना मेटाल ने सालचि दक सालमारी अ विलेज कमिटी रक्ने बुथ केन्द्र ने पाइथाक बुमुंग बुटां कारिजाखोनो मेटालनि सालचिचार सालमारिव हास्ते तिनि बसंलुकु दरबार संसाजाखा हास्ते केरंनि सेब्रोनाय तांसंनि तांक्राय याक्सु राजर्षि चक्रवर्ती साखा हाइकोर्टनि बेन्च कायसानो खबै बेबागै कायब्रिसि बा बेन्च काय नैसि बा साय बारा सिब्रै दरबारनि कक चरना बागै तिसाजाखा हाइकोर्ट कायनि दरबारनि कक पाइरेजाखा सानजा जरा कायसि सायनि गोबां दरबारनि कक पाइरेजाखा अल त्रिपुरा केमिस्ट एन्ड ड्रागिस एसोसिएसन नि साक्षरमा बाय तिनी आगतलानि बुजं कुचुक माध्यमिक रिंगनग थैरिमा शिविर संसाजाखा अबनरगै जोगालेजाक पाण्डव मानजाखा दलेश्वर रामकृष्ण मिशन नि महाराज अमरतानन्दजी आगिनि एमएलए डक्टर दिलीप कुमार दास आगतला प्रेस क्लाब नि कासको प्रणव सरकार आकसं शिविर खरक नैरा थैरेखा त्रिपुरा क्रिकेट एसोसिएसन बाय कम थिंजाक टपन मुकमु अरनि नकआउट क्रिकेट बाटाइमुंग तिनी सेंखा तिनी पुइला साल थंमुंग कायथामुंखा एमबीबी स्टेडियम संसाजाक थंगो चलमान संग विकेट गायबा बा युनाइटेड बीएसटी नो मेचेनखा नरसिंहगढ़नि पीटीए थंखलाव संसाजाक थंमुंग हार्बे क्लाब रान कायसा बाय उल प्ले सेन्टर नो मेचेनखाताय नरसिंहगढ़नि टीआईटी थंखला संसाजाक थंमुंग मौजा क्लाब विकेट गायब्री बाय पुल स्टार क्लाब नो मेचेनखा बुस्कांना दाम नैथि ब्रो हास्तेनि सालथां खुवाय दलायताय सिपाही जला हांकर र फेरांक गै दामसाव ब्रैसे निसिमि पासि किलोमिटार दौै नबार सिबसाय वाटै फाइमान होनै हजाकमुं रोखा नबार दैबारना खंखना सालनि तुंमारि साक थामसि थाम डिग्री सेल्सियास ताय खामाव नैसि थाम डिग्री सेल्सियासनि गानांगिनि दङना तिनि सालनि साखानि तुंमारि थामसि बा डिग्री ताय खामानि तुंमारि दंखा नैसि नै दशमिक चौखौ डिग्री सेल्सियास पारेना सोखां तिनि ककतमा बबाग्रक ताइसा पर्यो मन्त्री बख्रक नरेन्द्र मोदी खिना नायसिमि नखा सालनि बेरायमाव तेलेंगानाताय गुजरात थांगना आरो मोसां मोदी जुदा जुदा सामुं बुटां ग मान्जागाना मन्त्री बख्रक नरेन्द्र मोदी मान्जाकमानि बिसिंतै पश्चिमबंगनि पुइला बिजेपिनि मन्त्री अकरा अंगै समाय तांखा शुभेन्दु अधिकारी बसंनि जतनि काहाम अंजाक काहाम हांखरनि बिसिं नानाजी देश

पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसीके, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने MIRV प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे, कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री

0: सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे, कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 मंत्रिमंडल मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रमाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित रहे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की तुरंत बाद ही शुभेंदु अधिकारी प्रशासनिक काम में जुट गए। ब्रिगेड में शपथ ग्रहण समारोह के बाद वो जोरासा को ठाकुरबाड़ी गए और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद मैदान में पीडब्ल्यूडी की टेंट में राज्य पुलिस और प्रशासन की शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। बाद में शाम को भवानीपुर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निवास पर जाकर राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरी मंत्रिमंडल का गठन अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने अगले सोमवार 9 में प्रशासनिक कामकाज की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाया है। कलकत्ता से आकाशवाणी के लिए अभिरूप भट्टाचार्य जी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने श्री अधिकारी को आगामी कार्यकाल की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि मंत्री के रूप में ये सभी पश्चिम बंगाल के विकास पथ को और मजबूत करेंगे। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कड़गम टीवीके के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक रिपोर्ट।
2: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। 2 विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को 1 सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि वीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: एक्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडे बेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। इसकी कुल लागत 3,175 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व के आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान PMGSY के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम में श्री चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को राज्य में 973 सड़कों के लिए वित्तीय आवंटन और स्वीकृति पत्र सौंपेंगे। समारोह में श्री चौहान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 18,907 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA सरकार द्वारा 11 वर्ष पहले शुरू की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी प्रमुख सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजनाओं से हुए लाभों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजनाएं देश के लोगों के लिए गरिमा, आश्वासन और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री इंट्री व्हीकल MIRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। MIRV ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस मिसाइल का परीक्षण कई पेलोड के साथ किया गया, जिसका निशाना हिंद महासागर के भौगोलिक क्षेत्र में फैले विभिन्न लक्ष्यों पर था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्नि मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, सेना और उद्योग जगत की सराहना की है। प्रवर्तन निदेशालय ED ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े एक कथित धन शोधन मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई धन शोधन रोकथाम अधिनियम PMLA 2002 की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कंपनियों के खिलाफ दर्ज 3 मामलों के सिलसिले में मुंबई के 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। CBI ने बताया है कि ये तलाशी अभियान कंपनियों के निदेशकों के आवासीय परिसरों के साथ साथ उन मध्यस्थ कंपनियों के कार्यालयों में भी चलाए जा रहे हैं, जिनके खातों का इस्तेमाल बैंक निधि के गबन के लिए किया गया था। सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में

0: पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया है कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार कर्नाटक ने सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जहां 6 पंचायतों को चुना गया है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का स्थान रहा, जहां प्रत्येक को 5-5 पुरस्कार मिले हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA ने आज असम के बक्सा जिले से अमेरिका को 20 मीट्रिक टन शहद की पहली खेप का निर्यात किया। APEDA के प्रसंस्करण संयंत्र में परीक्षण और प्रयोगशाला उपकरण उपलब्ध कराने सहित बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग से ये निर्यात संभव हुआ। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया में चल रहे क्षेत्रीय संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से एक प्रस्तावित 14 सूत्रीय रूपरेखा पर ईरान की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि तेहरान की प्रतिक्रिया वार्ता के अगले चरण को निर्धारित कर सकती है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने हालिया अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों की आलोचना करते हुए अमेरिका पर तनाव बढ़ाकर कूटनीतिक प्रयासों को कमजोर करने का आरोप लगाया। ये ताजा घटनाक्रम हॉर्मुज जलडमरू मध्य और उसके आसपास की घटनाओं के बाद सामने आए हैं, जिनमें ईरानी और अमेरिका सेनाओं के बीच नौसैनिक मुठभेड़ की खबरें शामिल हैं। अमेरिका के अधिकारियों ने ईरान के ड्रोन कार्यक्रम से जुड़े नेटवर्क को निशाना बनाते हुए नए प्रतिबंधों की भी पुष्टि की है। हालांकि तनाव के बावजूद न तो अमेरिका और न ही ईरान ने औपचारिक रूप से युद्ध विराम के टूटने की घोषणा की है। इस बीच इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए अपने अभियान तेज कर दिए हैं। समाचार कक्ष विशेष शुक्ला।
0: चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डैम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेंगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। वहीं आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटन्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 17वें ओवर में 3 विकेट पर 186 रन बना लिए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। राजस्थान अंक तालिका में चौथे जबकि गुजरात 5वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। बिहार में आज तेज हवाएं चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिन के दौरान केरल, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिणांतरिक कर्नाटक में कल तक बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच कोंकण और गोवा के कुछ स्थानों पर गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसी के, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने MIRV प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे, कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया। और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।